0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: स्थापन समिति। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9864002292। संचालक समिति सदस्य गिरबहादुर तामाङ। राजु शर्मा प्रिन्सिपल। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841853949। कुबेर बुढाथोकी भाइस प्रिन्सिपल 9861404888। विद्यालयको फोन नम्बर 0949410132। इमेल sharesarewotiengliss@gmail.com।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: साथी हुनै रहेछ, माया जबरजस्ती खोसेर होइन, खुशी खुशी मन जितेरै पाइने रहेछ।
1: इन्टरनेट दुरुपयोग नगर्नु है।

नमस्कार रेडियो सैलुन सामुदायिक एफएम मैले में थपलो 7 MHz बाट म बद्र प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्मत 2083 साल आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन 2026 अक्टोबर 4 तारीख आश्विन 18 गते आइतबार अष्टमी तिथि 3:47 मात्र अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरिया साक्षेण कल्पय भरी

तारी छयान राजा नवश का इशारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मंडा।

धर्म कुमार कैसरिया हो श्री ब्रह्म ज्ञान याने विदुर कैसरी ज्ञान हव शिशु जन्म मनुन बढ़ाले पनि कृति उज्ज्वल हो श्रुत सहित।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम नरबहादुर खड्का। मेरो घर कालिङचोक वडा नम्बर 9 कटुवा बजार कालिकाथान नरबहादुर खड्का 82 मेरो उमेर।

जय श्री सचिदानंद गुरु महाराज को जय। जय श्री शांताबाई जी लगायती महात्मा जी को जय। हरिओम तक्षोम।

द्वापर युगमा कृष्णजीले अर्जुनलाई वहाँ द्वापर युग कृष्णजीले अर्जुनलाई वहाँ आत्मज्ञान दिनुभयो कुरुक्षेत्रमा आत्मज्ञान दिनुभयो कुरुक्षेत्रमा आत्मज्ञान दिनुभयो कुरुक्षेत्रमा

कृष्ण जी को दयालु मनन्त दन्त छोडी जाँदैन मनन्त कृष्ण जी को बत्तीसे दन्त दन्त छोडी जाँदैन मनन्त दन्त छोडी जाँदैन मनन्त दन्त छोडी जाँदैन मनन्त कृष्ण जी को